किस्मत की लकीरों से। सलाम भाई संगी नन मौसम डेर को ले रहे स्पोग में करार तब में सलाम शहजादी निजाम भुरना सलाम एम शाह ब्रो हाउ आर यू वेलकम टू द शो शो इज वेरी ब्यूटीफुल सलाम टू आवर लिसनर्स स्पेशल सलाम टू स्पोग में करार आई

0: मंगल बुध और जुमरात दगाशानी ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगुई अखबल ओ पी डी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के हफ्ते आखिर ने द्रेवरजी के भी जुमा हफ्ता और इतवार नौ पता याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम नूर मालूम दोपहारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3 और बलखवा कपड़ों शॉपिंग पारबा तरसो मुंगा बाजारों की गर्जो
1: ओ हो सरिया परेशान की गमा दबी मसले अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द सड़ो तपारा हम मायारी और सुटने मिलावेगी लक ग्रेस टाम टेक्स इडमानी पाशा अलकरम और नोर मल्टीनेशनल ब्रांड्स और जनानों दपारा मारियाबी मरीन सफायर निशात और प्रिंटेड लॉन हम मिलावेगी और दाला सके दमाशुमान दपारा हम फैंसी कपड़े हम मौजूद दी
0: मतलब यो छत लांदी दा टोल सामान
1: आओ आओ तो यो छत लांदी दा हर से मिलावेगी
0: वाह वाह वाह वाह ब्याहो बेलू बेलू दुकानों दतलो जरूरत निश्ता
1: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटग्राम तासु दखवाखी दुकान लो पता याद साते अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटग्राम नीस पीएसओ पंप अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटग्राम और पता दर नकलती की नुसैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351-36-640 बल नंबर दे 0391-21-162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालई में
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरे उसे

0: या भाई छिमावा की आज का कहे आजमा हूँ पर अरे आजेन्या या भाई
1: हाँ भाई रागली तो मुंगसर आ भाई वही छिमा बकी नहीं आदे बोले ना भाई ताबा किसे पर स्टार्ट किया दो मुखोजा खैर देने वाला नहीं रेशिवी वेगना
2: या बच्चे अबे बकबल काल कभी माँ बकिया जो वक्त जल उसे ये माँ बकी वाले नया जैसे अबे बकिया जे
1: अत दल खड़े वाले का बाबा वही माँ बकिया का बुई माँ बकिया का
3: नारे वहम पजूरा पुरबान दस्तर गुतुरा
0: या चाहिए गए सजाए माँ अखिल ये उबले या बजे कम से या जावल क्या गए सच जगाने मुझे आजाद का
1: आके दे

0: सिर्फ एक कप?
1: खुद ही तो महंगाई महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं।
0: मतलब दो लोग एक ही कप में पियेंगे?
1: नहीं, आप देखेंगे।
0: मुझे पता था।
1: क्या करूं? इससे बनते ही दो कप हैं।
2: समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए।

माशाल्लाह हे बस मंगवा दूर दिखे ना माशाल्लाह हे बा वहे बा जमंगवा सूर दिखे ना कोपन दे रवर से दुखा प्रोग्राम तरी कोपन दार से दले दिखे ना ये लगे सोग रहा तो व्हाट्सएप दिला दे वाइस की नो जमा और तकवास से की व्हाट्सएप दिला दे वाइस में कवा दो व्हाट्सएप दिला दे से में कवा वाइस में कवा जी

बिल्कुल जनाब दादे फेम 88.4 रेडियो अमन बटग्राम माते वेलेशी आरजे निजाम सईद और तासु तस वेलेशी दा तासु पखपल होए मैसेज बखवाए खाल बखवाए पमेस काल ना पूरा खाल।

किट बटाग्राम गुल सुपर स्टोर एंड बेकरी बिल मुकाबिल अल्फहर होटल ताई प्लाजा बटाग्राम गुल मोहम्मद सरबताज तो मिलावेगी फरमान कॉस्मेटिक्स सेंटर अजमल मार्केट बटाग्राम की बताओ तो मिलावेगी फरमानुल्लाह सरा याद साते फरमानुल्लाह दुकान दरजे दो बजो नवाखल पे ग्यारह बजो पूरी खुला हुई सहर अटो नवाखला तर दो तीन बजो पूरी दुकान बन हुई ادری بجونا واخلا تر گیارہ پوری کلاوی دسر زم ہر قسم پراڈکٹ یعنی صفات کاسمیٹکس دسر پورا ملاوے گی عطا اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سینٹر نز وابڈا آفس بٹاگرام عطا اللہ سرم ملاوے گی مایا داس ملوترا جنرل ہسپتال نیز ویگن واڈا بٹاگرام کی وطاستہ ملاوے گی پیدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا بٹاگرام کی وطاستہ ملاوے گی सदाबहार स्वीट एंड सुल्तान जनरल स्टोर मेन बाजार बटाग्राम सुल्तान जेब सर बताओ उसने मिलावेगी बटू कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट मेरा के बताओ उसने मिलावेगी शाजी कॉस्मेटिक्स शॉपिंग मॉल लेडीज मार्केट मेरा के बताओ उसने मिलावेगी इजहार कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट आरएचसी मेरा के बताओ उसने मिलावेगी हामिद सुपर स्टोर कुजबांड चौक के बतास्तो में लावेगी अजलान कॉस्मेटिक्स मिनियारी सेंटर आर एच सी अस्पताल लेडीज मार्केट कुजबांड के बिलावेगी तास्ता सैयद मुस्तफा जनरल स्टोर के बतास्तो में लावेगी वसीम जनरल स्टोर गिरोले बाजार के बतास्ता जमंगा सिफात कॉस्मेटिक्स मिलावेगी वसीम जनरल स्टोर गिरोली बाजार बटाग्राम द गिरोले मोड़ के बाबूदी हट्टी जनरल स्टोर नेस डीएचक्यू अस्पताल बटाग्राम के बतास्ता मिलावेगी अस्पताल त मखामख बाबूलाला सरा देने अलावा शाहिद जनरल स्टोर मंगरे कमेसर तौर घर के बतास्ता मिलावेगी मोहम्मद शाहिद सरा अगर सरबा जमंगा सिफात कॉस्मेटिक्स मिलावेगी और दिस सरबात एसेट गो पावरएक्स हम मिलावेगी मुस्तफा कॉस्मेटिक्स एंड गारमेंट जनरल स्टोर नियाज मार्केट पेमाल अड्डा बटाग्राम सैयद मुस्तफा सरबता उसने मिलावेगी यौजल जरूर वाख ले सिफात कॉस्मेटिक्स देर खस्ते रिजल्ट पकी